पूरे 11 भाई जो हैं पूरे ये 36 साल में यूनाइटेड हैं। कह क्या समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग कहीं पर न्यूज लीक ही नहीं होती कि हमने किया है, दुश्मन जो है बिल्कुल यूनाइटेड है, किसी ने नहीं कहा कि मैंने किया, सारे पूरे 11 के 12 भाई बहुत अच्छी तरह से। इतना खूबसूरत नहीं हो सकता, कुरान साफ कहता है कि देखो भाई ये दुश्मन है, ये दुश्मन यूनाइटेड है, एक दो साल के लिए नहीं, पूरे 36 साल दोस्त जो हैं कभी बताते नहीं कि हमने किया है। आखिर में जब मसला आया, बाप के सामने बात वाजे हो गई, तो तब का बाबा बख्श दीजिए, ये भी करामत है याकूब भाई के, बख्श दिया। हाय हाय हाय, क्या क्या समझने, कुसलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद समझ में आ रही नहीं? ये करामत क्या करामत है, करामत बेनेवोलेंस, व्हाट इज बेनेवोलेंस, क्या है कि इंसान 36 साल की दुश्मनी, तवज्जो, किसने किया, भाइयों ने किया, आखिर में भाइयों से मुलाकात हो गई, माँ बाप से मुलाकात हो गई, और माँ बाप ने भाइयों ने सजदा किया, काला या अबते हादा तअवील रुयाया, बाबा ये है मेरे ख्वाब की तावील, ताबीर अलग है तावील अलग, ताबीर किसी ख्वाब को इंटरप्रेट करना कहते हैं, तावील ख्वाब जो है हकीकत से बदल जाए, बचपने से जो बचपने में जो ख्वाब देखा था हज़रत यूसुफ ने, वो ख्वाब तावील में बदला कि जो ख्वाब था ख्वाब ही नहीं रहा, हकीकत में सामने आया, माँ बाप भी और 11 भाई ने सजदा किया, हादा तावील और रुया, बाबा ये जो है तावील है जो ख्वाब ज़ाते परवरदिगार ने दिखाया था। अब किसके हाथ में बादशाहत आ गई, साथ हजरत यूसुफ के हाथ में, और मغلوب कौन हो गए, क्या करना चाहिए जी, इतनी कुदरत के बाद जज्बा लेना चाहिए, मार दूंगा ख़त्म कर दूंगा, बहुत ही सबक लेके जाइए, हम लोगों के दोष घरों में भी हमारे बहनों से भाइयों से ज़रा सा थोड़ी सी चपकलिश हो जाती है, हम सूरत नहीं देखना चाहते, हमारी मैयत में मत आओ, ये हो वो हो, हम लोग कितना आगे बढ़ जाते हैं। ये अजीब व गरीब है, 36 साल भाइयों ने दुश्मनी की, और जब भाई वापस पलट कर आ गए तो एक जुमला कहा, ला तस्रीबल यौम, आज बदले का दिन नहीं है। तो हदीस में है, अगर हुकूमत तुम्हें मिल जाए उसका कफारा यही है कि तुम मजलूम को भुला दो, गैर को दुश्मन को भी बख्श दो, अगर तुम्हारे पास हुकूमत आ जाए तो गैर को। चुनाचे जब मक्का फतह हुआ, फतह मक्का के बाद जब दाखिल हुए तो सारे लोग ये समझ रहे थे यौमुल मलहमा, बल्कि सारे असहाब तो जंग के मैदान में तो लड़ते नहीं थे, यहाँ तो करीब आकर के लड़ रहे थे, यौमुल मलहमा यौमुल मलहमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है या बदले का दिन है, सरकार ने कहा बदलो, स्लोगन बदलो, यौमुल मरहमा यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है बदले का दिन है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह, तो इंसान ये करामत को ले जाता है कब्र में, आखिरत में, अपनी ज़िंदगी में। वो करामत क्या है, लक़द करमना बनी आदम व हमल्लाहुम फिल बर्र वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फद्दल्लाहु अला कसीरन मिम्मन फद्दल्ला तफ़दीला। सूरह इसरा की 70 आयत है, बहुत मशहूर आयत। हमने इंसान को इंसान क्यों कहा है, उसमें करामत है, उसमें ये जज्बा है, वो दुश्मनी ग्रेजस को नहीं रखता, वो ग्रेजस को भुला देता है। जितना ईमान आगे बढ़ता है उतना ही वो वसीउल कल्ब होता चला जाता है, वो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है, वो बड़े बड़े मकासद की तरफ उसकी निगाह होती है। उम्मीद है कि हमारी एज ए कम्युनिटी हम लोग छोटी छोटी बातों में ना उलझें, बल्कि बड़े मकसद की तरफ तवज्जो करें। बड़ा मकसद है इमाम के आने की तैयारी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह आली मोहम्मद वाजिल फरज। जंगों को जानते हैं, 2 हिजरी से लेकर 8 हिजरी तक 86 माइनर और मेजर वार्स हुए हैं, और पूरे के पूरे इस्लाम ने डिफेंसिव

सबसे अजीब व गरीब, शायद बहुत अच्छे बातें कही हैं शोरा ने, कि मौलाना ने लफ्ज़ पानी में शर्म को हटा दिया। कोई इंसान खाना मांगते हुए मुमकिन है कि शर्मा जाए, लेकिन पानी मांगते हुए कोई शर्माता नहीं है। इसके माने कि इमाम हुसैन ने मसले पानी में कहा कि ये पानी इतना सस्ता होना चाहिए, इसमें किसी को शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना। शायद यही वजह है जब मौला आखिरी रुख्सत को आते हैं सैयद सज्जाद के सराहने, बेटा जब पलट कर मदीने जाना, हमारे चाहने वालों को सलाम कहना और कहना जब कभी पानी पीना। देखिए फितरत का वो जवाब है, जब कभी पानी पीना हमारी प्यास को याद करना, जब किसी गरीब का तस्करा सुनना हमारी गुर्बत को याद करना, जब कभी पानी हाथ में आता है तो अब क्या प्यास है, कौन हुसैन है, अस्सलामु अलैकुम। जब आज हमारी हालत है, जिसने बाबा की ज़बान से कानों से सुना है, बेटा मदीने वालों से चाहने वालों से ये कह देना कि पानी पीना। इसीलिए रिवायतों में कि जब भी सैयद सज्जाद वज़ू के लिए पानी लेते थे, करबला का रुख करते थे, अस्सलामु अलैका या बता कतील आतशान, ए मेरे प्यासे बाबा। जब भी पानी आता था इतना क्रिया करते थे कि पानी मुजाफ में तब्दील हो जाता था, पानी को फेंक दिया जाता था। मिनहाल कहते हैं करबला के बाद हम गए पुरसा देने के लिए, हम भी किसी को सुनते हैं तो जाते हैं पुरसा देने के लिए। आज भी बैठे हुए बरसी की मजलिस है, उनके बच्चों को पुरसा देने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके मरहूमिन को बख्श दे। मिनहाल कहते हैं कि मैं मौला से मिलने के लिए गया, जब बैतुल शरफ के करीब पहुँचा तो देखा कि परनाले से पानी गिर रहा। मैंने अबा को समेटा, किसी ने कहा मिनहाल ये पानी नहीं है, तेरा मौला रो रहा। ताज्जुब हुआ मिनहाल को, कैसे मुमकिन है कि इंसान गिरिया करे और परनाले से पानी निकले। बाहर ऊपर जब पहुंचा तो क्या देखा, सामने वजू के लिए पानी है, मौला बे अख्तियार रो रहे हैं। इतना गिरिया किया कि वजू का पानी बन गया मुजाफ, मौला ने फेंका, सलाम करके बैठ गए। मिनहाल जुमला का मौला कब तक रोइएगा, मौला कब तक रोइएगा। मौला ने पहलू बदला, कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा जुदा हुआ था, जानते थे कि जिंदा है, मगर इतना गिरिया किया। वबयदत अइना, कुरान ये कहता है कि उनकी आंखें सफेद हो गई थी। मिनहाल मेरे सामने मेरा पूरा घर बर्बाद हो मिनहाल रोते हैं रोते हैं रोते हैं, फिर भी चाहते हैं मौला को तसल्ली के जुमले कहें। क्या कहने इन बुज़ुर्गों के जो इमाम को तसल्ली देते हैं। एक मर्तबा का मौला, मैंने सुना है आपके घराने में कि शहादत शरफ है, शहादत इज्जत है। मौला पहलू बदले, शहादत शरफ है, लेकिन माँ बहनों का, माँ बहनों का। इसीलिए जब कभी पूछा जाता तो करबला को याद नहीं करते थे, ये कहते थे अश्शाम सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल्ला अरवाहिल्लती हल्लत बेफनाइक व अनाखत बेरहलक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बकीतु व बकिया लैल व नहार। السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين।

इस मौजू को पेश करना चाहता है। पहली मिसाल मैं आपको दूंगा एक बाप की और एक बच्चे की। आप समझ गए, कुरान मजीद में बाप और बच्चे की मिसालें बहुत है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल का वाकया है, बाप है और बेटा है। एक और मकाम पे मिलेगा जनाब याकूब है और एक बेटा नहीं बहुत से बेटे हैं, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। और एक बाप और बेटे का मकाम या बात हमारे सामने जो आई है वो जनाब लुकमान और उनका बेटा है। वहां पर यह काम आपको करने का है। मैं कहता हूं हर बार कुरान खोलिए, दो आयतें ऐसी है जिस पे ये मौजू आपके सामने साबित हो जाएगा। और मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन ये वक्त मुझे साथ नहीं दे रहा है। मैं इंशाअल्लाह इल्तिमास करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप अपने घरों में कुरान मजीद को खोलोगे। दो आयत की निशानदेही करता हूं, उनकी तरफ आपकी रहनुमाई करता हूं। पढ़िएगा लुकमान और उसका बेटा, चैप्टर 31 वर्स नंबर 18 एंड 19, कुरान मजीद का 31वां सूरा, 18वीं आयत और 19वीं आयत। देखिएगा जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को किस तरह से समझा रहे हैं। लेकिन ये बात थी लुकमान और बेटे की ना, हमने आपके सामने मिसाल दी 10वें इमाम की, क्योंकि उसकी विलादत बसआदत के लिए हम जमा हुए हैं। लेकिन 10वें इमाम के सरबरा कौन है? उनके लिए कुदवा हसना नमूना हयात कौन है? वो और नहीं, वो हमारे नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जब खुदावंद करीम ने अपने हबीब को ये हुक्म किया है तो हमारी बात क्या? परवरदिगार आलम ने रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है। कुरान को खोलिए, चैप्टर 26 वर्स नंबर 215, 26वां सूरा, आयत का निशान 215। वहां पर ऐलान रब्बुल इज्जत होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक्फद जनाहका लिमन तबअका मिनल मुमिनीन। ऐ मेरे हबीब, अपने परों को झुका दो उनके सामने, उनके लिए मोमिनों में से जो तुम्हारी या तेरी पैरवी कर रहे हैं। अजीजा ने मोहतरम, होना तो यह चाहिए ना कि हमें कहा जाए, हमें भी कहा गया है। सूरह हुजरात को खोलिएगा, शुरू की ही आयत है कि मेरे नबी के सामने अपनी आवाज को कम करो, हमें भी हुक्म दिया गया है कि हम हमारे नबी के सामने नबी के लिए बुर्दबारी के साथ पेश आए। लेकिन यह आयत अजीब है, यह तो समझ में आता है कि हमें हमारे नबी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन यह क्या बात हुई कि उसी नबी को हुक्म दिया जाता है, ऐ मेरे हबीब वक्फद जनाहका लिमन तबअका मिनल मुमिनीन, ऐ मेरे हबीब मोमिनों के साथ तुम्हें भी अपने आप को तवाज़ो के साथ, बुर्दबारी के साथ अपने आप को, अपने परों को झुकाने का है। अजीजान मुहतरम, जब नबी को यह हुक्म दिया गया है तो हमारी आपकी बात क्या हुई, क्या बात रह गई? मैंने कहा ना, इस मौजू पे बात करना बहुत आसान, और हमारी तकलीफ या बीमारी क्या है, यही है ना, इन बातों को जब पेश करते हैं या इन बातों को जब हम साथ में मिलकर सुनते हैं तो हमारी सबसे बड़ी फिक्र यह होती है कि उनको यह करना चाहिए, उनको यह बोलना चाहिए, उनको ऐसे रहना चाहिए। हर बार हमारी फिक्र यह होती है कि सामने वाला, बाजू वाला, कोई तीसरा आदमी जो है या कोई दूसरा आदमी जो है, उसको किस तरह से अपनी जिंदगी को चलानी चाहिए। हमारी कभी ये फिक्र नहीं होती है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें हमारी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। नहीं, हमेशा उनको ऐसे, बीवी तू ऐसे रहना, बच्चे तुम ऐसे रहना, मियाँ तू ऐसे रहना, सास हमेशा कहेगी बहू ऐसी रहनी चाहिए, बहू हमेशा कहेगी सास ऐसी होनी चाहिए। अजीजा ने मातम, क्या ये सब बातें फक्त और फक्त दूसरों के लिए होती है? नहीं, सबसे पहले मेरे अपने खुद के लिए होती है। इसलिए 10वें इमाम ने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए कि अली इब्न हमजा क्या बात करता है, मन हुआ खैरु मिन्नी व मिन अबी, मुझसे जो बेहतर है